0: नेपालीहरूलाई काय र कातर सम्झेकाइनौ एकता हो। नेपालीहरू हाँसी हाँसी मर्न तयार छन्, तर कायर भई कदापि आत्मसमर्पण गर्दैनन्।
1: उन लोगों ने जंगल के अंदर से एक नल बनाया है, अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देंगे तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।
2: एलम्बू FM 89.6 MHz।

0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered personal music feature from सारेगामा.

पानी और एक्स उसका माचे से फंसना है मुझे अगर तू करे साजिश है व्हाट्स अप वो बोलते डिवाइन तुझे स्लो पीना पसंद है टर्न वाटर टू वाइन तेरे पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन दुनिया शर्माती व्हेन यू स्टॉप एंड यू स्माइल अब बाकी मुझे पे छोड़ सुबह हंसते रहे स्टोरी इज लाइक अ मेलोडी हाँ तू बजते रहे ये पर्सनल है छोड़े नहीं लश्कर है मराठी है मुर्गी और बोलती वो स्पष्ट है पहले थाली के बाद तुझे बाली दिखाएंगे सोच कैसे कैसे लोग मेरे शादी पे आएंगे ये बाकी फंसाएंगे बर्बादी बताएंगे जो करूँ तेरा सिर्फ तुझे हंसाएंगे।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए.
1: नंबर वन, मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली. दूसरी, इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुलगुलु ग्लोरिया. दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए.